मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं, ले तेरे पाँव परूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरीप न थी समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
0: Atif Aslam live in the UK.
2: Dil diya galla karange na.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
0: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
0: T's and C's apply.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Leica Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रही पुराने मगर सदाबहार गीत।

मैं बिसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

सुनिए हाथ वै सगा नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध।

आद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण नहि जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए।

वैजयंती माला का भाई एक्चुअली कौन है? वॉज इट किशोर कुमार? इफ यू हैवन वॉच दिस मूवी, वॉच इट, इट्स अ लवली क्लासिक. एंजॉय द लवली ट्रैक.

0: Hollywood Flashback with Kajol. Like
1: all right, so let me play one more dialogue from this song because some of you have got the answer. Yes, it's Rekha's voice, but the movie is not actually jo aap keh rahe hain. चलिए एक और डायलॉग एंड देन ऑफ कोर्स इसके बाद तो आपको थोड़ा सा हिंट हो ही जाना चाहिए कि विच इज दिस मूवी कमिंग अप.
2: अरे सेबो अभी तक तैयार नहीं हुई, उसकी तैयारी कभी खत्म हुई है क्या? सेबो मेले जाना है तो जल्दी से तैयार होके बाहर चलिया.
3: बस 5 मिनट में आई दीदी.
2: अरे उसको कह रही मुझे भी तो तैयार होना है.
3: तू आधा पौना घंटा आराम कर ले फिर तैयार होना शुरू कर, तब भी उसका हार श्रृंगार पूरा नहीं होगा.
2: छोड़ो ना माँ,
3: महंगे से महंगा कपड़ा पहन लेना, शहर जाके सिनेमा देख लेना और पका पकाया खा लेना, और तो काम आता ही नहीं उसे. माँ मैं सब कुछ सुन रही हूँ, इसीलिए मैं ऊंचा बोल रही हूँ. तो फिर मैं
1: ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स यू हर्ड 3 वॉइसेस, नाउ गेस द मूवी एंड मैसेज मी.
0: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
0: Step into the new grand showroom of Kajol's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajol's Couture, now open 7 days a week.
0: Kajol's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: राम कृष्ण हरी. UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ. 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन.
13: Travel in Style specialize in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208 954 0207. That's 0208 954 0007. Fully bonded, travel in style.
14: Travel in style.
13: Travel in style.
14: Travel in style.
15: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter, and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203 773 633 now. Apta bonded.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
18: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
17: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
18: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
19: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.
21: Suno sunaye ek kahani.

0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम फ्रॉम द मूवी वारिस इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड मनमोहन सिंह. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर विद सम अमेजिंग म्यूजिक फ्रॉम माय गानों का पिटारा ऑन लाइका गोल्ड.
1: दिस इज लाइका.

हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: लगी आग सावन जो फिर वो घड़ी है फ्रॉम द मूवी चांदनी इन द वोकल्स ऑफ सुरेश वाडकर. दिस मूवी वॉज रियली वेरी वेरी वेरी रोमांटिक डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा. ऑफकोर्स द मेन लीड वॉज श्रीदेवी एंड द मूवी वॉज टाइटल एंड यू नो द मूवी वॉज ऑन हर एंड ऋषि कपूर एंड दिस सॉन्ग वॉज एक्चुअली पिक्चराइज ऑन विनोद खन्ना एंड जूही चावला डिड अ कैमियो इन दिस मूवी. शी वॉज रियली रियली क्यूट एंड ऑफकोर्स इसके बाद शी बिकेम अ यशराज हीरोइन एज वेल. Well, Laika's latest episode, which is episode number 16, titled India Week Showcase, and it is hosted by Anuj Radia. Talking points are Laika Radio Network, our official radio partners of the India Week from May 26th to May 31st.
1: Laika Extra is here. Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
2: Kajal's Morning Mantra,

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344.

0: बृहस्पति वार वर्ष 2026 के मई महीने की 21 तारीख हो गई है आज। और वक्त वाल भाई, ब्रिटिश घड़ियों में इस समय 10:05 हुए हैं और ये समय है हमारी आपकी मुलाकात का, संगीत की सौगात का। गोल्डन गीतों का खजाना खुल रहा है और भाई कौन कौन चल रहा है लूटने के लिए हमारे साथ। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और बहनों भाइयों, आज के दिन कुछ चुने हुए और यूं कहिए कि भाई दर्द में सने हुए गीत जो हैं हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, सारे नहीं कुछ एक, क्योंकि हमारी एक बहन है जिनका अगले हफ्ते जन्मदिन भी आ रहा है, मिसिस शेख। वो अक्सर कहती है थर्सडे को दर्द भरे गीत नहीं होंगे तो फिर थर्सडे कैसा, मनोरंजन कैसा। दर्द भी मनोरंजन करता है बहनों भाइयों, हम सब का एहसास है ये, हम सब के पास है ये छुटपुट रूप में। शिकायत है, शिकवे हैं, नाराजगी है भाई, इश्क के वास्ते एक सजा ही सही, बेरुखी हुस्न की एक अदा ही सही। तुझको पाऊं ना पाऊं मुकद्दर मेरा, तुझको पाने की लब पे दुआ ही सही। तेरी जुल्फों की छांव मिले ना मिले, तेरे कूचे की ठंडी हवा ही सही। कैसे भूलूंगा मासूम चेहरा तेरा, बेवफा है तो क्या, बेवफा है तो क्या, बेवफा ही सही।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile.

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, आजा सरे बाजार तेरा प्यार बिक रहा है। और इससे पहले भाई वो बेवफा के लिए बेवफाई की शिकायत थी उस गीत में, शायरी के साथ जोड़कर हमने उसे भाई प्रस्तुत किया। तो दो गीत बैक टू बैक संगीत के तहत आपने सुन लिए हैं, क्या से क्या हो गया बेवफा, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म गाइड, एंड दिस सॉन्ग यू वर जस्ट लिसनिंग टू लता जी की आवाज में, ये था अली बाबा और 40 चोर फिल्म से। इस टाइटल से भी वही कई फिल्में बनी हैं। और अब बता दूं आपको कि करीब 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार, 11 बजे की खबरों के बाद होगा आज का विचार यानी चिंतन, और इसके अलावा भाई गीत संगीत और कुछ काम की बातें और कुछ अटपटी चटपटी बातें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हाँ, शायरी के साथ कुछ एक दर्द भरे गीत शोभा बनेंगे आज के प्रोग्राम के, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और मई महीने की 21 तारीख है, याद है भारत में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, आज उनकी पुण्यतिथि है। भाई एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान लिट्टे के द्वारा जो है उनकी हत्या की गई थी 21 मई, एंड आई थिंक दैट वाज 1991। चर्चा करेंगे। और भाई आज किसका जन्मदिन है, किसकी पुण्यतिथि है, उनका भी जिक्र होगा। तो 1 बजे तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। माय नेम इज रवि शर्मा एंड लेट मी टेल यू द पाउंड रेट नाउ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और साहब एक पाउंड का मूल्य दे रहे हैं SBI वाले इस समय 129.15 रुपीस। यस, योर 1 पाउंड कैन गेट यू अप टू 129.15 रुपीस। भाई यहाँ से जो पैसे भेजते हैं अपनों को तो खुश हो रहेंगे कि भाई काफ़ी रुपए मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अच्छा रेट मिल रहा है। लेकिन वहाँ भारत में इस बात को लेकर निराशा है कि रुपया सस्ता हो रहा है, इम्पोर्ट महंगा होता है, बाहर से चीज़ें मंगाने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन साहब अर्थव्यवस्था भारत की हालांकि मजबूत होती जा रही है, ऐसे में रुपये को महंगा होना चाहिए पर वो सस्ता होता जा रहा है वहाँ पर। भाई ये इकोनॉमी वाले जानते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। तो लेट मी टेल यू अनदर थिंग, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। और इसके अलावा ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन यू सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। बट रिमेंबर TNC अप्लाइज।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.

0: ऐसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
3: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है कहीं भी घूम कर आइए फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077 दैट्स 02089540077 आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है
4: ट्रेवल इन स्टाइल

0: तबला होता है, यानी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, कोंगो बोंगो टाइप, लेकिन ये ढोलक की थाप सुनाई पड़ती है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: जी हाँ बहन भाइयों, आप लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों का मजा ले रहे हैं। और अब हम भाई खबरों की ओर मुड़ने से पहले, यहाँ ब्रिटेन में तो जो एक अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई छुट्टियों के दौरान उन्हें फ्री ट्रैवल जो है वो उपलब्ध रहेगी, लेकिन एक और खबर है कि नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग असाइलम ड्रॉप्स बाई 12% कंपेयर टू लास्ट ईयर। कहते हैं कि 2021 के बाद ये सबसे ज़्यादा ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप है। UK net migration falls to the lowest level since 2021। ये एक खबर, और एक खबर और जो विचलित करने वाली है कि गलती से सम्राट की मृत्यु का ऐलान कर दिया गया रेडियो स्टेशन पर। रेडियो स्टेशन पर ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां तो भाई एकदम पकड़ी जाती हैं, कुछ गलतियां जो है लोग इग्नोर कर जाते हैं, सुन लेते हैं पर ध्यान नहीं देते। और ये तो बहुत बड़ी गलती है कि एसेक्स के एक रेडियो स्टेशन ने, कैरोलाइन रेडियो ने अब अपोलॉजी की है, माफ़ी मांगी है भाई। वो इतनी बड़ी गंभीर गलती कि सम्राट हिज एक्सीलेंसी महामहिम किंग्स चार्ल्स की जो है उन्होंने मृत्यु की घोषणा कर दी। और भाई आप जानते हैं इसके भी एक प्रोटोकॉल होता है कि वो सैड म्यूज़िक के साथ और ऊपर से परमिशन होती है, पहली अनाउंसमेंट तो वहाँ से होती है पैलेस से, लेकिन साहब उन्होंने कर तो दी, उसके बाद हंगामा हो गया, तूफान आ गया, तो बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली। वैसे भारत में भी ऐसी गलतियाँ हुई थी भाई, एक तो एक गलती मुझसे भी हुई थी, पर वो शुरुआती दौर था 1996 का, जब मैं रेडियो पर था और एक मैंने एक गंभीर गलती की थी, लेकिन वो अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई नहीं थी, वो टाइम की गलती थी कि इस ट्रांसमिशन को समय से पहले बंद कर करके बाय बाय कर दिया था, जबकि अभी समय बचा था प्रोग्राम का। गलती सुधार ली गई, दोबारा से ट्रांसमिशन शुरू किया और फिर क्षमा मांग के मैंने प्रोग्राम को कंप्लीट किया। लेकिन साहब ये गलतियां होती हैं रेडियो स्टेशन में, पर जब किसी की मृत्यु का ऐलान किया जाए, घोषणा की जाए, तो लोग कहते हैं कि इससे उनकी उम्र बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है कि भारत में एक ये गलती हुई थी शायद पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के विषय में, और नहीं तो एक वो होते थे क्रांतिकारी नेता बिहार के भाई, जिन्होंने सरकार पलटवा दी थी, सारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जयप्रकाश नारायण, आप ये नाम भूले नहीं होंगे, उनकी डेथ अनाउंसमेंट हो गई थी ऑल इंडिया रेडियो पर, और उसके बाद सैड म्यूज़िक भी चल रहा था, और भाई एक तरह से ऐसी लहर आ गई थी। बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पार्लियामेंट में बयान देके कहा कि ये झूठी खबर थी, और कहते हैं कि इससे मुझे पूरा विश्वास है कि जयप्रकाश नारायण जी की उम्र लंबी होगी, मानते हैं ऐसी। लेकिन भाई आज के समाचारों में इस खबर के अलावा और क्या क्या है, लेट्स फाइंड आउट इन द न्यूज। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में झारखंड की राजधानी रांची में आज प्रतिबंधित यानी बैंड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 27 मेंबर्स ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी ने झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और CRPF के सीनियर अफसरों की मौजूदगी में हथियार डाल दिए। ये सरेंडर झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन के तहत हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले कई मामलों में वांछित थे, उनकी तलाश थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अब आत्मसमर्पण करने वाले 27 माओवादियों के पुनर्वास में दोबारा से बसाने में सरकार पूरी मदद करेगी। काकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना आपने? भाई एक पार्टी रातों रात इतनी फेमस हो गई, उसके फॉलोवर्स की इतनी तादाद बहुत बढ़ गई, 4 दिन के अंदर काकरोच पार्टी के इंस्टा हैंडल पर फॉलोवर्स की तादाद 1.18 करोड़ को पार कर गई। इस संख्या को इंटरनेट पर इसके नाम

0: से वेबसाइट भी बन चुकी है। अभी इसमें ऐसी क्या खास बात है भाई, इसके बारे में कोई जो है टिप्पणी कर दी भारत के चीफ जस्टिस ने, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, सीजीआई ने, और उसके बाद भाई इस पर जो चर्चा बढ़ी है, और अब तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो वो क्या कहते हैं इसका, वो बंद कर दिया गया है उनके कैंपेन का एक्स हैंडल जो है भारत में, अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तमिलनाडु में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हुई है वहां तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित जोसेफ विजय ने आज अपने मंत्रिमंडल को एक्सपेंड किया। अपनी कैबिनेट में उन्होंने 23 नए मंत्रियों को शामिल किया है और इनमें से कांग्रेस के भी 2 मंत्री शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उसने ट्रंप की धमकियों पर कार्रवाई की मांग की है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने मांग की है कि सिक्योरिटी काउंसिल को ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार और रोजाना दी जाने वाली धमकियों पर चुप नहीं रहना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बार बार कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं माना तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बहुत बड़ा अटैक करेंगे, ऐसी कई बार जो है स्टेटमेंट्स अमेरिकी प्रेसिडेंट की आ चुकी हैं। और इन धमकियों पर चुप्पी की आलोचना करते हुए ट्रंप ईरान पर बार बार बमबारी करने और पाषाण युग में वापस भेजने की जो धमकियाँ देती रही हैं उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान के लिहाज से ये एक बेहद खतरनाक धमकी है जो वो बार बार दे रहे हैं। भारत से आने वाली खबरों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भाई ये वो दिल्ली एनसीआर है जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, उसमें हरियाणा के भी कुछ शहर आते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में एनसीआर में टैक्सी यूनियन की 3 दिन की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिकों और बस मालिकों और टैक्सी और मैक्सी कैब ऑपरेटर्स के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को बैठकर की इस हड़ताल का फैसला किया था। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों पर जो एनवायरमेंटल नुकसान की भरपाई के लिए जो टैक्स बढ़ाया गया है उस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने हड़ताल का फैसला किया है। आज से ये हड़ताल शुरू हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि उनके देश ने हमेशा वादों का सम्मान किया है, इज्जत की है, और युद्ध टालने के लिए हर रास्ता अपनाने की कोशिश भी की है। ईरान की ओर से सभी रास्ते अब भी खुले हैं, वो जंग नहीं चाहते, यानी बातचीत के रास्ते खुले का मतलब है, बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। ईरान का इस्लामी गणराज्य गरिमा और देश के अधिकारों की रक्षा की बातचीत करता रहता है, किसी भी हालत में वो जनता और देश के जो कानूनी अधिकार हैं उनसे पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने लिखा कि हम तर्क और पूरी ताकत के साथ आखिर तक जनता की सेवा करेंगे और ईरान के इंटरेस्ट और उसके सम्मान की स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान आया है, कह रहे हैं मैं जो कहूंगा वो वही करेंगे। पत्रकारों ने पूछा था कि क्या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के से ईरान पर हमले और आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर आपकी कोई बात हुई है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा, वो बहुत अच्छे इंसान है, मेरी राय में इसराइल में उनके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है। इस समय इसराइल में मेरी लोकप्रियता, मेरी पॉपुलैरिटी 99% है, मैं वहां प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ सकता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर के लंबी बातचीत हुई है और उस समय अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन कम करने और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिशें चल रही थी, जबकि इसराइल ईरान के खिलाफ सख्त रुख बनाए हुए है। तेल और गैस की कमी की खबरों पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक बयान आया है। देश की प्रमुख तेल कंपनियों में से एक, भारत की ये मेन पेट्रोलियम कंपनी है, इन्होंने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है कि भारत में तेल और गैस की कमी है। उन्होंने कहा कि भारत में इसके रिटेल नेटवर्क में सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन नॉर्मल है और कंपनी का काम बगैर किसी अड़चन के चल रहा है, किसी चीज़ की गैस की या तेल की कोई कमी नहीं है। अमेरिका ने क्यूबा के नेता राउल कास्त्रो पर 1996 में उसके दो हवाई जहाजों को गिराने और अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने समेत कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। आपको बता दें कि उस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 3 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। 94 साल के कास्त्रो उस समय क्यूबा की सेना के प्रमुख थे, आर्मी चीफ थे। हवाई जहाज गिराने की इस घटना की इंटरनेशनल लेवल पर कड़ी आलोचना हुई थी। वेल, ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: जर्नलिज्म की दुनिया से निकलकर अब लौट आइए मनोरंजन की दुनिया में। मुड़ते हैं संगीत की ओर।
2: રવિ શર્મા ને સાંભળવાનું નહીં છોડું।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ हॉल ट्रैवल का एक संदेश भाई नोट कर लीजिए, वो कह रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से भी ज़्यादा देर तक के भाई वो साथी हैं हमारे, भरोसेमंद हैं, प्रतिष्ठित हैं ये साउथ हॉल ट्रैवल वाले, और साथ में भाई ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड के विनर्स भी हैं। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल और कॉल 0208 574 8410।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: और साहब कुछ गीतों के लिए बड़ी प्रशंसा आ रही है, हमारे एजाज भाई चैशम में कह रहे हैं कि कजरा मोहब्बत वाला बहुत बढ़िया था। वाल शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज़ें सुनी, दिल को बड़ा अच्छा लगा। मानसी भी यही कह रही हैं, मानसी कह रही हैं लवली ड्यूट, एब्सोल्यूटली लव शमशाद बेगम उनकी आवाज़ जो है कुछ हटके है। भाई मैं ये गीत आप दोनों के नाम करता हूँ, एजाज भाई आपके भी और मानसी आपके भी, झगड़ा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बांट लेना, थोड़ा थोड़ा उनके नाम थोड़ा आपके नाम, एंजॉय कीजिए। और भाई ये गीत तो उनके भी नाम कर दो जिनका जन्मदिन है। जन्मदिन किसका है? जन्मदिन रंजन की बेटी का है, नीलम का। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू नीलम। रंजन जी हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी बेटी को, जन्मदिन धूमधाम से मनाइए, बच जाए तो केक भिजवाइए वरना रखिए खाइए। और हमारी बहन पिंकी सुन रही है, देर के बाद संदेश मिला है पिंकी, पिंकी नायक भाई, पिंकी थैंक यू वेरी मच। संदेश भले ही भाई रोज़ नहीं भेजती हैं लेकिन सुनती कहती हैं बहुत। और पिंकी आप संजय आनंद को भी हमारी ओर से बधाई दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा। उनका जो मेफेयर में रेस्टोरेंट रेनोवेशन के बाद 29 तारीख को फिर से खुल रहा है, पूरी धूमधाम और पूरी आन बान और शान के साथ हमारी शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच मैडहूस भाई, अब तो बहुत जगह है। संजय आनंद को बधाई और पिंकी आपके माध्यम से हमने पहुंचाई। 10:46 हो गए हैं ब्रिटिश घड़ियों में, कुछ एक संदेशों के बाद लौटते हैं हम।
3: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com
2: कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
10: Lights on, shutters up, staff ready.
9: But today's customers don't start on the high street.
10: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
9: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
10: They walk into your competitors.
9: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HartyHanks.com before your competitors do.
10: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Are we there yet?
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
13: But how? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simzy before we left London.
13: Simzy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
15: T's and C's apply.
16: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स
17: जस्ट एड हॉट वाटर वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी शीरा पोहा भाजी वेज बिरयानी दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट
16: जीरो मेस नो स्ट्रेस सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स.
18: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGoon.com.

0: वादा चाहिए और हमें थोड़ा समय चाहिए भाई, बहुत तेजी से हम खबरों की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और rates note कीजिए, एक pound के बदले in Indian currency they're giving 129.25 rupees. Pakistani 374.5, Sri Lankan 464.64, Bangladeshi Taki 165.22 and Afghani 84.48.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is sold at the rate of £108.72 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में होगा और 3 बजे से मैच शुरू होते ही क्रिकेट का स्कोर हम यहां से देना शुरू करेंगे, सुनते रहिएगा।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूं।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
2: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड। द वेट इज नाउ ओवर। द किंग ऑफ मेलोडी Kumar Sanu live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
7: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
6: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
7: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
6: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: राम कृष्ण हरी। UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया
5: आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
10: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
11: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 0208900-2323। द स्टार टूर्स,
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
12: योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस। यू आर करंटली नंबर 25 इन द क्यू।
13: 25? Seriously?
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo.
15: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
16: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
17: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 a.m., DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
18: The top stories this hour. Figures released this morning show net migration into the UK almost halved in 2025. It was 171,000 last year, down from 331,000 in 2024 and at its lowest level in 5 years. Separate statistics from the Home Office show there was also a fall in the number of people claiming asylum. Our correspondent Tom Cheshire says the official figures seem to differ from public perception.
19: Well, only 16% of people, according to Better Futures, which is a think tank, thought that net migration had decreased. Half the public think it increased over the last year. Half the public think it will increase next year again. So there's this real disconnect.
18: The Chancellor is expected to suspend tariffs on some food products like imported biscuits and chocolate later. Rachel Reeves is setting out plans to ease the cost of living crisis in a speech this morning. They include giving children free bus travel during the summer holidays. She says her number one priority is to help people through the crisis, which has been made worse by the Iran war.
20: This is all about trying to help families with the cost of living. We recognise that things are tough. Inflation has come down, but I recognise that things are still tough for families.
18: The Football Association's to launch an investigation into Southampton after the club admitted spying. It will look into whether charges should be brought after they were thrown out of the playoff final. Ofcom's criticised TikTok and YouTube, saying their content feeds are not safe enough for children. The regulator is calling for stronger action on online safety. Aston Villa has been crowned Europa League champions after getting past Freiburg 3-0 last night, their first major trophy in 30 years. They will return to Birmingham ahead of an open-top bus parade through the city this afternoon. The boss of EasyJet says the airline hasn't suffered any disruption to fuel supply. Keaton Jarvis urged passengers to book with confidence after concerns of a fuel shortage due to the Iran war bit ticket sales. Some companies have cut schedules recently because of a spike in fuel prices. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
17: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in London.
21: From the case files of Miss Maureen 118212, the case of the replacement rodent.
22: A woman called asking for the number of a pet shop. She needed a new hamster before her son returned from school. I didn't ask what happened to the original hamster. Best not to know some things.
23: Maureen! 118212!
21: For directory inquiries, call Maureen on 118212. Calls cost £2.50 per call plus 75p a minute with a minimum 1 minute charge plus your phone company's access charge.
24: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
25: वेरी गुड मॉर्निंग. आज के मौसम के विषय में आपको बता दें भाई, आज वेल दिन अच्छा रहेगा, टेम्परेचर अच्छा है, पहले थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे लेकिन ज़्यादातर समय मौसम खुश्क रहेगा। और साहब सनशाइन के साथ साथ टेम्परेचर आज 23 के आंकड़े को छुएगा लंदन में और 21 डिग्री तक जा सकता है मिडलैंड में।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Like a gold. Manoranjan with Ravi Sharma.
3: चिंतन चिंतन
25: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में चिंतन के साथ। मेरा नाम रवि शर्मा है और बहनों भाइयों मैं ये प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। वक्त चिंतन का हो चला है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार, और आज के विचार के साथ भाई एक संदेश भी है। आज का विचार हमें भेजा है रिचिंग पार्क से। ये रिचिंग पार्क लैंगली में है, स्लॉ के पास भाई, वहाँ से हमें हैरी दास ने ये संदेश भेजा है। कहते हैं चिंतन प्रोग्राम में शामिल करते हुए हमारी ओर से सभी संगत के श्रद्धालुओं को ये सूचना दे दीजिएगा कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संत त्रिलोचन दास जी महाराज पधार रहे हैं। शाम 5 बजे वो दर्शन दरबार रिचिंग पार्क में पहुंच जाएंगे, तो दर्शन के लिए लोग पहुंचे, दर्शन सत्संग भजन कीर्तन और लंगर सारी व्यवस्था रहेगी। तो हैरी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और परम पूज्य महाराज जी को हमारी ओर से भी स्वागतम। और आज के चिंतन के लिए वो कहते हैं कि मैंने महाराज जी के ही व्याख्यानों से लिया है आज का विचार। थॉट फॉर द डे, जीने की कला सिखाते हैं, जिंदगी की राह दिखाते हैं संत महापुरुष। और भाई आज हैरी कहते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने अंकल की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता देखने के लिए पहुंचा। अब साहब रिंग के चारों तरफ दर्शक बैठे थे, रिंग में 2 मुक्केबाज उतरे, बच्चे का अंकल जो है वो वही मुकाबले में उतरा, तो सामने वाला जो मुक्केबाज था काफ़ी स्ट्रांग हट्टा कट्टा विदेशी पहलवान टाइप, और बच्चे के अंकल थोड़ा सा दुबले पतले थे लेकिन मुक्केबाजी का बड़ा अभ्यास था उन्हें, और अच्छे मतलब कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल तक वो चैम्पियन रह चुके थे, और आज इस ओपन प्रतियोगिता में वो रिंग में उतरे थे भरपूर तालियों के बीच। तभी एक दूसरे पर भाई घंटी बजते ही मुक्कों की बरसात करने लगे दोनों मुक्केबाज बॉक्सर, और बच्चे के अंकल जो है दूसरे मुकाबले में सामने वाले के प्रहार से लड़खड़ाए और गिर पड़े। गिरते ही बच्चा रोने लगा, अंकल हार गए। तो बच्चे के पापा ने समझाया, नहीं बेटा, अंकल हारे नहीं हैं, अंकल गिरे हैं, गिरने से हार नहीं होती, नोट कर लीजिए भाई भाइयों, गिरने से हार नहीं होती, गिर के ना उठने से हार होती है। गिरना पॉसिबल है रिंग में, लेकिन जो उठने से इनकार कर दे ही इज नॉट आउट, वो पराजित है। हारा हुआ वो है जो हथियार डाल दे, जो हौसला छोड़ दे। गिरना, संभलना, फिर उठना हार की निशानी नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है भरा भाइयों। हम भी जिंदगी के सफर में कई बार गिरते हैं उठते हैं, लेकिन जब तक हम उठते रहेंगे हम जीत की ओर बढ़ते रहेंगे। गिरना हार की निशानी नहीं है, गिरकर ना उठना डेफिनेटली हार की निशानी है।

0: सुना आपने, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं, कोई ईश्वर नहीं, शक्ति नहीं है, और तू अजर अमर अखंड नहीं है, उस परमात्मा का अंश है तू, परमात्मा नहीं। तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में। गिरना हार की निशानी नहीं है, गिर के ना उठना या उठने की कोशिश भी ना करना डेफिनेटली हार की निशानी है। जिंदगी में ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे मौके आएंगे जब गिर जाते हैं लोग, लेकिन गिर के जब संभल जाते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर जीत की ओर बढ़ जाते हैं। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें हरिदास ने भिजवाया था रीचिंग स्पार्क से, ये स्लाव में है। और जहां भाई आज संत त्रिलोचन दास जी महाराज पधार रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है उनके दर्शन, उनके प्रवचन के लिए, तो भाई शाम को आज वहाँ सत्संग है। हमारी ओर से भी हरि भाई महाराज जी को प्रणाम कहिएगा। और आपने लिखा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति जस्टिस विजय कुमार शुक्ला जी भी पधार रहे हैं। भाई विजय शुक्ला जी का नाम चर्चा में, भारत में और विदेशों में भी उस बात को लेकर के है जो अभी इसी महीने कुछ दिन पहले फैसला आया है हाई कोर्ट से। फैसला आया है धार की भोजशाला के विषय में। भोजशाला विवाद का विषय थी, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी अपनी न्याय प्रक्रिया में भाई उन फैसला सुना करके शुक्ला जी ने जो किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, और उनका भी स्वागत करेंगे भाई, वो आज पधार रहे हैं, और महाराज जी का भी। हरिदास जी, हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस 5 दिवसीय सत्संग के लिए जो 21, 22, 23, 24 और 25 को हो रहा है, रीचिंग स्पार्क आइवर स्लाव में। बहरा भाइयों, चिंतन आपने सुना, गीत भी सुना, बस ये बात याद रखिएगा, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं। आज का चिंतन, आज का विचार कहता है कि गिरते ही उठने से इनकार मत कीजिएगा, उठने की कोशिश कीजिएगा, उठिएगा और फिर सफर शुरू कीजिएगा।
1: चिंतन
0: चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और भाई भाइयों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का संदेश आपके नाम कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू सेंड मनी, ये सही अवसर है, क्योंकि भाई जून के आखिर तक एक स्पेशल ऑफर भी जुड़ गई है इस भाई संदेश में। 1 पाउंड के बदले आज वो दे रहे हैं, इस समय जो रेट चल रहा है 129.15 इंडियन रुपीज़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये संदेश ये भी याद दिला रहा है आपको कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून। क्या खास बात है कि यू कुड विन £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds, ऑल्सो ए 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
1: Like a Gold.
3: Like a Gold.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: भाई बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवाए और अब पहले वो कल्लू कवाल की कव्वाली कैसी लगी आपको एक अरसे बाद सुनी होगी और उसके बाद भाई रवि साहब की बनाई धुन पर लता जी की आवाज़ जमी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी और अब जरा ये सुनिए और बताइए ये कैसा गीत है

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a extra podcast update.
3: और लाइका एक्स्ट्रा पर भाई जो हमारा नया एपिसोड है पॉडकास्ट का, नोट कर लीजिए, इंडिया वीक शोकेस होस्टेड बाय अनुज रेडिया अब तैयार है आपकी वही द्वारा देखे जाने के लिए। वेल, लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियली रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक 26 मई से और 31 मई तक ये चलेगा। और इस बीच आप ज़रूर देखिएगा हमारा एपिसोड 16 जो इंडिया शोकेस पर है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे पुराने एपिसोड्स भी अवेलेबल हैं हमारे पॉडकास्ट पर, और उसमें भाई लाइका एक्स्ट्रा जो है ना उसमें उसकी अवेलेबिलिटी नोट कीजिए, स्पॉटिफाई पर हैं हम, यूट्यूब पर हैं, अमेजन, एप्पल और दूसरे जो बड़े बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर उपलब्ध हैं लाइका एक्स्ट्रा, ज़रूर देखिएगा।
0: लाइका एक्स्ट्रा, get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Like a Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
0: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
1: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
1: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
10: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
11: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
13: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एज यू सेलिब्रेट। स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays.
15: What's your travel mantra?
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
15: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Like a Goon. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइक अ गोल्ड .com पे।
17: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: फन का वो दरिया जो सहरा में रवां होता है और जिसके लफ्जों में मोहब्बत का बयां होता है और जिसकी आवाज में झरनों का गुमा होता है, भाई उससे मिलना जुलना रोज कहाँ होता है। छुट्टी मिले, फिर ट्रेन में बुकिंग मिले, समय मिले, दोस्त मिले, साथ मिलके चलें।

0: sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और रेट हम बता देते हैं भाई LemFi की, अगर आप अपनों को पैसे भेजना चाहें तो एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.27 रुपीस फॉर वन पाउंड, पाकिस्तानी करेंसी में 373.95 रुपीस, श्रीलंकन रुपए दे रहे हैं 462.96, बांग्लादेशी टके 164.99 एंड अफगानी 84.44.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: The gold is sold at the rate of 108.72 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: पहले कल के मैच का जिक्र करें भाई, टाटा आईपीएल 2026 के मुकाबले अब दूसरे दौर में पहुंच गए हैं, पता लगेगा कि प्लेऑफ में कौन कौन सी टीमें शामिल रहेंगी। कल का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच था भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स वालों को होम ग्राउंड का फ़ायदा तो मिला, सपोर्ट मिली, लेकिन मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो बहुत ही लड़खड़ाती हुई, लगता ही नहीं था कि ये वो टीम है जिसमें रोहित शर्मा खेलते हैं, कल भाई चले नहीं। लेकिन आपको बता दें कि कल का मैच 4 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, और भी बड़े अंतर से जीत सकते थे, लेकिन भाई दोनों ही टीमें जो है फिर बैलेंस करके आगे बढ़ी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स रही कल की विनर्स, 7 बॉलों के रहते 4 विकेट से उन्होंने जीत दर्ज की। आज क्या होगा, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग भिड़ेंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वह विशाल स्टेडियम, और भाई घरेलू सपोर्ट मिलेगी गुजरात टाइटंस को, पर देखते हैं कि नतीजा क्या होगा। मैच स्टार्ट्स एट 3 PM, स्कोर के आंकड़े हम आपको बताते रहेंगे, सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड and regulated by the FCA.
3: ये है Leica Gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. तुझे देखा तो ये जान। For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए, फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए, अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208-954-0077, दैट्स 0208-954-0077, आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
6: ट्रेवल इन स्टाइल,
7: ट्रेवल इन स्टाइल,
6: ट्रेवल इन स्टाइल।
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank.com. bank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 24 आवर लाइन.
8: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: एक जमाने से महिलाएं जेवर गुम करती आ रही हैं और हम ढूंढते रहे हैं, आज तक मिले नहीं हैं.

पास जैसी हो न हो किस्मत की वो हेती न टीनी इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी।

0: गई खूबियों वाली, तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली, और गौरी गौरी गौरी और गौरी हक ताली, जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर बस मिल जाए तो फिर एक चाय की प्याली।
1: चाय बनाने वाली, अरे साहब चाय पिलाने वाली, चाय स्टूडियो में लाने वाली है कोई? वो कहते हैं कि आज तो नेशनल टी डे है, भाई मैं तो चाय का इतना दीवाना नहीं हूँ, मिल जाती है तो पी लेते हैं। अब वो कभी कॉफ़ी कभी चाय बनाने वाली दोनों की दोनों गायब हैं। एक वो खुश बराबर के स्टूडियो से कभी कभी वो लाती थी तो कभी काजल लाती थी, और अब देखो हमारे जो श्रोताओं में से अंजलि भिजवा रही है चाय, लेकिन कैसे भिजवा रही हैं, स्क्रीन पे फोटो भिजवा रही हैं। अंजलि ऊपर वाला सब देखता है, ये कोई तरीका चाय भेजने का? इतने सारे कप भेज दिए हैं, अकेला कैसे पीऊंगा इतनी सारी चाय? भाई आज वो कहती है कि इंटरनेशनल टी डे है शर्मा जी, अगर आप चाय नहीं भी पीते हो तो आज पी लीजिएगा। अरे मैं तो पी लूं, पर कोई पिलाने वाला भी तो हो, गरम गरम चाय। और गरम गरम चाय है ना, हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई

0: गिला।
1: क्या मांगता है तुम
2: है? थैंक यू अंजलि सिंह भाई, ये गरम गरम चाय भिजवाने के लिए। बल अगर मैं भी गाने ऐसे ही आपको स्क्रीन पे भिजवा दूं लिख करके, सुनाई ना पड़े तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, और एक बात है भाई, ये चाय का रिश्ता जो है लोगों से, हमारी अनीसा नासिर जो है वो भी आजकल छुट्टी पे गई हुई है, वरना वो तो चाय के बिना जी नहीं सकती, आपको बताऊं। वो तो बस वो गाना गाती रहती है, मुझे चाय ना मिले ता मर जावा। और साहब चाय का मुझे याद आता है भाई, प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन पर वो चाय वाले जब आवाज़ लगाते हैं ना, तो गाड़ियां आती जाती रहती, रात के 1 बजे 2 बजे उनकी आवाज़ नहीं निकलती, पर चाय बेचनी होती है तो उनकी आवाज़ कैसे कैसे बोलते थे वो, चाय हो जी चाय, नींद में हैं, थके हुए हैं, भाई सुबह से चाय बेच रहे, लेकिन रात को 12 बजे ट्रेन आती है और उनको चाय बेचनी है, तो वो बस वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, कोई मांगे ना मांगे, लेकिन जब भाई सुबह सुबह ताज़े ताज़े जब आते हैं नहा धो के, फिर उनके स्वर बदल जाते हैं, फिर वो आवाज़ ऐसे लगाते हैं कैसे,
0: अच्छा चा चा चा चाहे चा चा चा चा चाहे।
2: भाई चाय का स्वाद आपने चख लिया, अब लौट आइए और रियलिटी से भाई मुलाकात कीजिए, हमारे साथ कीजिए। पहले तो पता लगाते हैं कि पाउंड का रेट क्या दे रहे हैं SBI वाले।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: State Bank of India UK telling that why they are giving 129.15 rupees for £1 if you want to send money to your people. और भाई इस महीने में जून के आखिर तक तो खास अवसर है, आप सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून and you could be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000, to bhai ye mauka mil sakta hai aapko, £75 voucher jeetne ka, ye har roz vijeta banenge, aur iske alawa 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy to let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
4: Like a gold.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
10: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
9: Crazy for Kishore at the Prince Regent Hotel on 19th June. To book all, 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Laika Gold.
12: राम कृष्ण हरी, UK तयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ. 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर, हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद, वाद्य महोत्सव. किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
1: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: हल्के फुल्के moments को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
16: राइस कौन से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट? जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: Travel in Style offer the best prices in flights and holidays to any destination of your choice. Call now for your early bird discount. 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Travel in Style. Fully bonded for your peace of mind. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
20: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
21: No worries. I'm having fun on PlayOjo.
22: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
20: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
21: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
23: Feel the fun. PlayOjo.
24: 18 plus, gamble aware.
25: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
26: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
2: और डीजे साहब आर्टिस्ट ऑफ द वीक से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले चाय पिलाते हैं। इंटरनेशनल टी डे है आज और अंजलि सिंह आप कह रही कि हमारे घर आइए, हम आपको अदरक वाली चाय पिलाएंगे। रहने दो, पहले भी कईयों ने बुलाया है और हर बार उन्होंने गलत एड्रेस दे के हमें कहीं और ही पहुँचाया है। कहीं सैंडलों से पिटवाया है तो कहीं पर कुत्तों से हमारी पैंट का सैंपल मंगवाया है। हाँ, एक क्या भाई कुत्ता पाल रखा, वो पहलवान का घर था, पहलवान का कुत्ता, पहलवान से भी ज़्यादा बड़ा कुत्ता, मेरा मतलब बड़ा पहलवान, और साहब उसने जो अटैक किया तो हमारी पैंट का थोड़ा सा सैंपल उन्होंने रख लिया, पैंट का कपड़ा रख लिया, शायद दही बनवा के भेजेंगे देखो। लेकिन हमारे पेरिस वाले श्रोता कहते हैं, मोहब्बत भाई पेरिस से मोहब्बत खान कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं तो निभाते हैं, शर्मा जी हमारे यहाँ आइए चाय पिलाएंगे। तो साहब चलें, बड़े दिल वाले श्रोताएं हमारे, चाय ज़रूर पिलाएंगे इंटरनेशनल टीडी पर। मोहब्बत भाई हम पेरिस आ रहे हैं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज शम्मी कपूर, जिन्होंने भाई हमें पेरिस घर बैठे दिखाया था।
27: अजी ऐसा मौका

मोहम्मद भाई कह रहे हैं कि अब 25 बरसों से आपको सुन रहा हूँ। सुनते रहिएगा भाई, मैं तो 50 बरसों से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये गीत आपके नाम।

0: एन इवनिंग इन पेरिस का गीत आपने सुना भाई। शम्मी कपूर हैं इस सप्ताह के आर्टिस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वीक और उनकी फिल्मों के गीत गूंज रहे हैं लगातार, आप सुनते रहेंगे वीकेंड तक उनकी फिल्मों के गीत स्पेशली। भाई जुनैरा आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच, सुनती रहिएगा, हम भी आपकी आवाज जो है सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू, आपकी हेलो पहुंच गई है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

रेडिंग में अनु गर्ग की पसंद, और ये गीत आप कहती है कि हमारी सहेली आराधना को सुनवा दीजिएगा, लग जा गले।

0: विजय सटन वाले और विजय मॉरिशस वाले, आप दोनों के नाम ये गीत। इसके अलावा भाई टोरंटो में उल्लास, थैंक यू वेरी मच। नैना जी आप तो हमेशा साथ रहती हैं हमारी। बैक्सली हीट में हैं आप।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भाई अब एक संदेश आपके लिए, लेकिन ये क्या लिखा आपने सहर जी के, मैं पिछले 46 बरस से आपके प्रोग्राम सुन रही हूँ, 46 बरस से, इतनी उम्र है मेरी नहीं, आपकी तो होगी, आप सुन रही हैं। मैडम अगर रातें निकाल दो तो बर वही आप फिर क्या काउंट करिएगा, रातें निकाल के तो मैं 36 का बनता हूँ, थोड़ा सा 37 के नज़दीक हाँ। थैंक यू वेरी मच, पर आप बहुत देर से सुन रही हैं, इसका एहसास है हमें, हमारे साथ जुड़ी हैं। और प्रति

0: चाय आपसे ऊपर थोड़ा ही है, बना के पिलाएंगे भाई। इस चाय के भरोसे हमने बहुत धक्के खाए हैं बता दूं। वैसे चाय पर ना बहुत सारे सौदे होते हैं, समझौते होते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स जो चाय पे मिलते हैं, और साहब चाय के ऊपर तो रिश्ते भी होते हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए मम्मी ने आपको चाय पे बुलाया। तो मम्मी ने क्यों बुलाया भाई, आप क्यों खुद क्यों नहीं बुलाती है, मम्मी ने चाय पे बुलाया। और फिर मम्मी कहेंगी कि चाय बेटी ने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, पैरों से कौन बनाता है भाई।
1: ये है Like a Gold। This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

याद दिला दें आपको, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट लाइका रेडियो डॉट कॉम, देख लीजिएगा। और लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कन्फर्म पार्टनर ऑफ कुमार शानू शो एज वेल, कुमार शानू लाइव इन कॉन्सर्ट इन द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल।

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ हॉल ट्रैवल वालों की भी सुन लीजिए भाई, वो याद दिला रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल। छुट्टियां मनाइए और साउथ हॉल ट्रैवल के साथ जाइए, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से वो सेवा में हैं, भरोसेमंद हैं और विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी हैं। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल ऑन कॉल 0208-574-8410।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: This summer at Tesco Mobile, get our 100

0: ये है लाइका गोल्ड। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: और बहनों भाइयों, टाटा IPL 2026 के मुकाबले अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं भाई सेमीफाइनल और फाइनल में कौन जगह बनाते हैं। लेकिन उससे पहले कल का हम रिजल्ट बताते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। कोलकाता वालों ने मुंबई वालों को हरा दिया 4 विकेट से 7 गेंदों के रहते। आज भाई 74 मैच टोटल खेले जाने आईपीएल में, 74 मैचेस, और आज 66वां मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। अब से करीब 2 घंटे बाद मैच शुरू होगा 3 बजे, और ये मैच खेला जाएगा गुजरात में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो है दुनिया का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम। और भाई वहाँ से जो क्रिकेट के आंकड़े मिलेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे, आप सुनते रहिएगा। और देखते हैं भाई फाइनल तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक मैच का रिजल्ट और भाई उसकी स्थिति हम आपको सुनवाते रहेंगे।
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Ye hai Like a Gold.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। आज के प्रोग्राम का आगाज मैंने किया फिल्म दाग के गीत के साथ, दाग द फायर। महिमा चौधरी थी, चंद्रचूर सिंह थे इस फिल्म में एंड संजय दत्त थे। बहुत खूबसूरत फिल्म थी और इस फिल्म का संगीत भी बड़ा ज़बरदस्त था। सारे गाने बड़े बड़े पॉपुलर हुए थे और मुझे सारे के सारे गाने इस फिल्म के अच्छे लगते हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, पर आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं गलत कह रही है सरिता तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा गीत मैंने फिल्म ललकार से चुना था, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ें। और पहले गीत में आवाज़ें किसकी थी? उदित नारायण एंड अलका याग्निक की। आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है। मेरे साथ साथ चल रहे हैं, यस, आप पूरी स्क्रीन भरी हुई है आपके मैसेजेस के साथ। अभी तो मैं आई हूँ, थैंक यू एवर सो मच। आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं भी दिल से आपका स्वागत करती हूँ। और जहाँ भी बैठे हैं यही पूछना चाहूँगी, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक तो हैं ना आप? खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी को इंजॉय करते रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो चेयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और सिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। सो आज के गीतों में क्या चल रहा है, कुछ पता चला है या नहीं पता चला? अगर पता चला है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता चला तो भी कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, कुछ ही देर में बता दूंगी। कोई कंपटीशन तो है ही नहीं है, वैसे ही ज़रा सिलसिला चला लेते हैं कोई ना कोई, ताकि ताकि आपका भी दिमाग काम करता रहे। ओ नेक्स्ट गाना कौन सा हो सकता है, ओ ये वाला गाना सुनना चाहेंगे इस मौजू पर, या ये चेन बन रही है तो नेक्स्ट कौन सा वर्ड आने वाला है। अगर आपको अभी नहीं पता चला है तो मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट वर्ड होगा यार। यस, बोल मेरे साथ ये आपने सुन लिया, प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, और कितना वॉज द वर्ड जो मैंने चुना था नेक्स्ट सॉन्ग में, बोल मेरे साथ या कितना मुझसे प्यार है। और अब अगला वर्ड क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए और फिर मुझे बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, V. अगर आप इंडिया पैसे भेजना चाहते हैं, your £1 in British sterling can get you today 129 rupees and 15 paisas. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: ट्रैवल इन स्टाइल, स्पेशलाइज इन holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Fully bonded, Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
5: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall. at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: Two businesses.
11: Same town.
10: Same service.
11: One appears on page one of Google.
10: The other doesn't.
11: Guess which one gets the customer?
10: The truth is brutal.
11: The first page of Google gets the business.
10: Everyone else gets what's left.
11: So here's the real question.
10: When your customers search for what you sell, do they find you?
11: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
15: Laika Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
16: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: एक ही नाम की दो फिल्मों के गीत सुन लिया आपने। दाग द फायर चुननी थी मैंने 1999 की फिल्म, और फिर ये फिल्म दाग आई थी 1973 में। यश चोपड़ा जी की फिल्म थी जिसमें काम किया था राखी, शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ने। बहुत दमदार एक्टिंग थी तीनों एक्टर्स की। और ये गाना जो था ये मीनू पुरुषोत्तम ने गाया था एंड साथ दे रही थी लता मंगेशकर जी। बहुत खूबसूरत गीत था एंड शर्मिला टैगोर पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। शर्मिला टैगोर एंड राखी दोनों की एक्टिंग वाओ, दोनों मेरी फेवरेट हैं वैसे। और सारे गाने बड़े अच्छे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। उम्मीद करती हूँ मेरी पसंद आपकी पसंद भी जरूर बनी। और अब अगला गीत किस वर्ड पर आ रहा है सोचते रहिए।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, यार मेरे यार हम पे कितना मरते हो। हम
3: प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना

0: हमें अपना बना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट। ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: भी हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना बनाकर देखो भाई, ये मैसेज मेरी तरफ से आपके लिए भी था। थैंक यू सो मच, आप मुझे अपना बना रहे हैं और अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। मिसेस पाकी चियांग, आपका मैसेज मिल गया मुझे। और ये कौन है, ब्लू टी भेजी है। ब्लू टी किसने भेजी भाई? ब्लू टी अपराजिता फ्लावर की टी है ये, आपको बहुत अच्छी लगेगी रियली। नमस्ते सरिता जी, आपको भी। अ कप ऑफ टी इज़ अ हग इन अ मग। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच। इसी तरह हैप्पी इंटरनेशनल टी डे है आज। ओके, तो चाय पिला रही हैं आप हमें, थैंक यू। आप भी पीजिए, चुस्कियाँ भी लीजिए साथ साथ। विजय गनोवा जी सुन रहे हैं आप, इजाज इन चशम, उल्लास इन टोरंटो, एंड सहर मानसी जी, सबके मैसेजेस मिल गए। राजू जी, राजेश जी, विजय गुदरी, आपका भी मैसेज मिल गया। हना, विश्वजीत, राजू, थैंक यू। तोची वनेसर जी, आप भी बड़े प्यार से जुड़ चुके हैं।

आंखों का काजल, काजल पर था ये गीत और मुझे उम्मीद है कि आपने इस गीत को भी पसंद किया। दूसरा आदमी, ये था फिल्म का नाम और गीत इस फिल्म के सारे बहुत अच्छे थे। एंड अगेन आई विल से कि आई थिंक राजेश रोशन का ही संगीत था इस फिल्म में भी। आप सुन रहे हैं जहाँ भी बैठे मेरा साथ दे रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे गाने पसंद आ रहे हैं। दिनेश पोपट जी जस्ट जॉइन, हंसा बोरा जी, विजय गुत्री, अंजलि जी, मिसेस शुक्ला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विजय गनोवा आप भी पहुँच गए हैं, भरत गंगाराम जी, पाके एजाज इन चशम, थैंक यू। आइए इस गीत के साथ साथ हम नेक्स्ट आवर में पहुँचते हैं और नेक्स्ट आवर में अच्छे अच्छे गीत होंगे सुबोध मुखर्जी की फिल्मों के।

0: गुड आफ्टरनून प्रोग्राम के सेकेंड आवर में हमने कदम रखा, दो गीत आपने सुन लिए। इस 15 मिनट्स आफ्टर 2 o'clock। कैसे हैं आप, कैसे गुजार रहे हैं आज का दिन? दोपहर क्या हो रहा है इस वक्त? टीवी देख रहे हैं और कान इस तरफ हैं, या घर के दूसरे काम कर रहे हैं और रेडियो ऑन है और आप इंजॉय कर रहे हैं? किसी ने मुझे लिखा अभी अभी कि गार्डन में बैठे प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। कौन थे वो जिन्होंने लिखा कि हम गार्डन में बैठे सुन रहे हैं प्रोग्राम? यस, नमस्कार सरिता जी, रेडियो इन द गार्डन इंजॉइंग योर स्वीट प्रोग्राम, ब्लेसिंग्स टू यू। एंड ये है विभाकर स्टैनमोर में। अच्छा, इतनी गर्मी है कि गार्डन में बैठे आप। रमीला पटेल अहरो में सुन रही हैं, हरीश रुडा जी, प्रकाश सोमाया जी, जगदीश चीन बुशी, दिनेश पोपट जी, हंसा वोरा जी, विजय आपका भी धन्यवाद, मनु जी, अर्जुन जी, आप सभी पहुँच चुके हैं और पहले भी कुछ नाम ले चुकी हूँ। मिसेस शेख, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सुनते रहें, इंजॉय करते रहें प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने। राइट, पहला गीत मैंने चुना था फिल्म तीसरी आंख से, 1982 की फिल्म थी ये। और इसकी एक वजह ये है कि आज हम याद कर रहे हैं सुबोध मुखर्जी को। सुबोध मुखर्जी के बारे में बहुत से मेरे साथी जानते होंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 14th of April 1921 में एंड 21st of May 2005 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है, तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ही वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड ही इज रिटन फ्यू स्टोरीज एज वेल। ही डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड हिंदी फिल्म्स दैट वर पॉपुलर इन देयर टाइम। ही केम फ्रॉम अ फैमिली इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग एंड वॉज पार्ट ऑफ द फेमस मुखर्जी फैमिली विच हैड सेवरल मेम्बर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड ही वॉज द ब्रदर ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशाधर मुखर्जी एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द स्कूल ऑफ मूवी मेकिंग दैट बिलीव्ड दैट फिल्म वर ऑल अबाउट great storytelling. In the first two decades of his career, he had a high success percentage and he continued making movies till the late 1960s or before retiring. Lekin unhone, Subodh Mukherjee ne teesri aankh bhi banayi thi in 1982 mein. Yes, jiska geet maine program mein shamil kiya. He produced that film and then in 1985 Ulta Seedha was another film jo inhone produce bhi ki thi aur डायरेक्ट भी की थी और इसमें किसने काम किया था, राज बब्बर थे एंड रति अग्निहोत्री इन द लीड रोल। उस फिल्म के गाने इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे लेकिन फिल्म अच्छी थी। और भी इनके बारे में बातचीत होती रहेगी पर हम अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको चॉइस देने जा रही हूँ दो गीतों की, क्योंकि नेक्स्ट मैंने जो फिल्म चुनी है वो है फिल्म अभिनेत्री। अभिनेत्री के दो गीतों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गाना होना चाहिए, कौन सा, दोनों ही गीत मुझे पसंद है। एक है ओ घटा सांवरी और दूसरा गीत है सजना ओ सजना। इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, जल्दी से वोट दीजिए ताकि मैं चयन कर सकूँ उस गीत का, उस गीत को सिलेक्ट कर सकूँ जो आपकी भी पसंद है। ओ घटा सांवरी इज ए एंड सजना ओ सजना इज B.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और आज आपका 1 British sterling pound कितने पैसे दिला सकता है? 128 rupees and 75 paisas. And send money to India via SBI YONO app or branch before end of June. और फिर आपको क्या मिल सकता है? Win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Aur yahi nahi, also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
9: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
14: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
13: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
13: કોલ 0208900 2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: યોર કોલ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અસ. યુ આર કરન્ટલી નંબર 25 ઇન ધ ક્યુ.
16: 25? સીરિયસલી?
15: Sounds like Ojo time.
16: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
15: Sorry about the wait. How can I help?
16: You can help me celebrate. I won.
17: Feel the fun. Play Ojo.
18: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
19: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
20: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
22: Thank you.
0: सजना ओ सजना सजना ओ सजना।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुना और इंजॉय भी किया, यस मुझे मालूम है। और अब मैं अपने सभी सुनने वाले को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप किशोर कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो स्पेशल म्यूज़िकल नाइट फीचर्स फीचरिंग केतन इंद्रानी एंड संजय और इनके साथ बैंड होगा 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल में है ये इन एसेक्स। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? आपके लाइका गोल्ड रेडियो। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो डेट भी नोट कर लीजिए और वेन्यू भी।
3: दिस इज लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर।
2: हाय अमन,
3: कोका नूडल्स।

0: एक से बढ़कर एक गीत आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने ज़्यादातर भी वोट जो दिए थे सजना और संजना वाले गीत को दिए थे, थैंक यू। इस मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी दूसरे गीत को पसंद किया था, कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में वो गीत भी शामिल होगा। एंड सुबोध मुखर्जी ने प्रोड्यूस की, मुनीम जी इनके ब्रदर ने की थी प्रोड्यूस, लेकिन डायरेक्ट की थी मुनीम जी। सुबोध मुखर्जी ने पेइंग गेस्ट, लव मैरिज वाज प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय हिम, जंगली वाज प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड, एंड अप्रैल फूल, साज और आवाज़, शागिर्द, अभिनेत्री, ये फिल्में सभी सुबोध मुखर्जी की हैं। आज अब हम उन्हें याद करें उनके गीतों के जरिए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, more yum. Grab your Coca bowl today.
0: और भाई सरिता आपको याद दिला दे जल्दी से कि कुमार सानू लाइव शो हो रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क ने स्पॉन्सर किया है। वेल दे आर द कन्फर्म पार्टनर हैं। और कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल इज टेकिंग प्लेस ऑन मंडे 25 मे, इस बैंक हॉलीडे को। सो टिकट्स अपनी बुक करा लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे। अरे भाई सरिता, आज आप आधी बात कही और वहीं पर रुक गई। एनीवे, मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी

0: रफ़ी साहब एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत मैंने साज़ और आवाज़ फिल्म से चुना था, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आपको इंडियन रुपी एक पाउंड के बदले मिलेंगे 129.3, पाकिस्तानी रुपीज 372.99, श्रीलंकन रुपी 461.71, बांग्लादेशी टका 164.51, अफगानी 84.50.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold Rate is worth £108.11 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: Right, वही क्रिकेट की बात करें तो अहमदाबाद में आज मैच शुरू बस होने ही वाला है गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। चेन्नई सुपर किंग चोज टू फील्ड फर्स्ट, सो आप इंतजार कीजिए, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
1: India Cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: भी आपको सुबोध मुखर्जी की फिल्मों के कुछ एक गीत मैंने सुनवाए और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किए, एंड कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की। हिज फिल्म्स ऑफन फोकस्ड ऑन फैमिली ड्रामा, रोमांस एंड सोशल इश्यूज, रिफ्लेक्टिंग द टेस्ट ऑफ मिड 20th सेंचुरी इंडियन ऑडियंस। जंगली इनकी फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी और स्पेशली उसका याहू वाला गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था। वाइल इंटरनेशनली इतने फेमस नहीं हो पाए थे जैसे राज कपूर और गुरुदत्त थे, पर सुबोध मुखर्जी की जितनी भी फिल्में थी अच्छी बनी। सम ऑफ हिज वेल नोन मूवीज इंक्लूड लव मैरिज, दुल्हन एंड अभिनेत्री, शर्मीली, शागिर्द, कुछ एक गीत आपने सुने, कुछ नहीं भी सुन पाए तो नेक्स्ट आवर में देखते हैं।
3: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara najikna Asian shops ma.
4: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know. There's a lotto draw coming up, and
5: it could be you.
4: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.

ये गीत हमें न्यूज़ तक पहुंचाएगा और 3 बजे की खबरों के बाद उस पर हम कुछ एक गीत आदित्य चोपड़ा की फिल्मों के भी सुनवाएंगे। आज अपना बर्थडे मना रहे हैं आदित्य चोपड़ा। सो मेरे साथ रहिए।

0: भी अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं किसी से रूठती हूँ। अगर मेरे लिए ये गाना था तो अपने आप ही अपने नाम कर लिया। हाँ राइट, महेंद्र पटेल जी अभी अभी ज्वाइन किया, लेट क्यों आए हैं? निर्मला जी आपने भी अभी ज्वाइन किया, जैस्मिन सुन रही हैं, इंतशाब, पमी जी, इंसलाव, निर्मला कीरत जी, विजय गुदरे, मनु जी, जगदीश इनबुशी, प्रकाश सुमैया जी, रमीला पटेल इन हैरो, हरीश रुडा जी, आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगी मैं, मिसेस पाके चियांग, विजय गनोवा, रेनू विशिष्ट, शाहिद मलिक साहब, उल्लास टोरंटो में, दिनेश पोपट जी, भारती जी, अर्जुन जी, विभाकर, इंस्टा एंड मोर, हंसा वोरा जी एंड मिसेस शुक्ला, और भी बहुत सारे नाम हैं, अंजलि, भरत गंगाराम जी, अजय जी, जिसका नाम रह गया, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं अब ले सकूँगी नाम आपके। बता दूँ ये गाना जो आपने सुना ये किसने आप तक पहुँचाया?
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ही नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजोल्स कुचोर साउथहॉल
3: at 159 the Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.

0: Fisher Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sierra South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Looking for your next cruise getaway?
4: Explore the Mediterranean, Northern Europe, the Caribbean, or even around the world. With Travelling Style, every trip is tailored to you.
3: From relaxation to adventure. Call 0208-954-0077.
4: Or email info@travellingstyle.co.uk.
3: 24/7.
4: Travelling Style.
3: Where your dream holiday begins.
5: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
6: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
5: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
6: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
9: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: भाई कहीं जाना चाहती हैं तो मैं जगह बता देती हूँ आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है बताना चाहूँगी, पर ये पहले बता दूँ कि ये गीत मैंने अभिलाषा फिल्म से चुना था। लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए ये आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है। मैं आपको बताने जा रही हूँ खुशवंत सिंह जी के लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल बिगैन इन कसौली इंडिया में 15 ईयर्स अगो, और लंदन में पिछले 8 साल से हर साल होता है। खुशवंत सिंह जी लव्ड लंदन, वे ही स्टडीड एंड वर्कड एज वेल, सो विच इज़ वाई देन द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ही हैज़ इन्वाइटेड दिस फेस्टिवल इन दिस कंट्री। सो इस साल का थीम है रीवाइल्डिंग द माइंड, इकोलॉजी स्टोरी टेलिंग एंड द फ्यूचर। द खुशवंत सिंह लिट फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट हो रहा है 30th मे को एट SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, देन मूव ऑन टू ऑक्सफोर्ड जून 2nd को वहाँ जाएगा एंड इन सटन, और जून 6th को कर्टसी सटन सिटी काउंसिल के। एंड रजिस्ट्रेशन फ्री है बिल्कुल ऑन इवेंट ब्राइट, जो भी जाना चाहे जा सकते हैं। थीम इज़ रिवाइल्डिंग द माइंड एंड खुशवंत सिंह जी कितने बड़े लिटरेचर के प्रेमी हुए हैं, कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने किताबें लिखी हैं, ये आप सभी जानते हैं। सो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। एंड रश्मि जी थैंक यू सो मच फॉर योर लवली व्हाट्सएप मैसेज, आपने चाहा था कि सभी सुनने वालों को बता दिया जाए तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन सब तक चाहती है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, बता दिए इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है। Right, a pound in your pocket can get you कितने पैसे? Indian rupees 129.17, Pakistani rupees 373.29, Sri Lankan rupees 462.96, Bangladeshi taka 164.76, Afghanis 84.29.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £108.17 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: Right, we Gujarat Titans और Chennai Super Kings के बीच में मैच शुरू हो चुका है. अहमदाबाद में IPL का ये 66th मैच है और Chennai Super Kings ने चूज किया कि वो फील्ड करेंगे फर्स्ट. तो गुजरात टाइटन्स ने बना लिए 8 ओवर्स में 81 रन्स और उनका कोई खिलाड़ी अभी आउट नहीं हुआ है.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है
3: Leica Gold.
4: Leica Gold, traffic and travel.
5: This is Martin with your travel. Slow on the A312 Church Road and Mandeville Road this afternoon as you head from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. A40 Western Avenue, heavy westbound before Gypsy Corner. The speed sensor is giving a travel time there of about 10 minutes. Queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hangar Lane Gyratory and slow on the A217 Wandsworth Bridge Road northbound before you get to New Kings Road. To public transport and Shepherd's Bush Station closed and trains are not stopping on Mildmay London Overground. That's due to flooding. And no service on Windrush London Overground line between West Croydon and Sydenham. And severe delays on the rest of the line. It's due to an earlier obstruction on the line at Sydenham.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: This is Leica Gold. Bali Brumbut on Gold Afternoons.
6: Leica Gold.
7: Gold Afternoons with Bali Brambert.
8: Bali Brambert
7: is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India.
1: राइट भी मेरे जाने का वक्त है और जाने से पहले मैं आपको दो गीत और सुनाऊंगी. मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह, उनका इंतज़ार कीजिए. माइक्रोफोन के इस तरफ से अब सरिता सबरवाल को इजाज़त दीजिए. कल फिर आपकी सेवा में 1 बजे की खबरों के बाद हाजिर हो जाऊंगी. सैंडी के बाद आएंगी अश्विनी और फिर हमारे यहाँ से गोल्डन नाइट्स होती हैं. गोल्डन नाइट्स में भी बहुत प्यारे प्यारे गीत. सुबह सुबह काजल ब्रेकफास्ट शो लेकर आती हैं, देन रवि शर्मा जी. सो सुनते रहिए प्रोग्राम इसी तरह से. और मेरे बाद दूसरी तरफ आज विश पटनागर हैं जो ही विल बी सिटिंग इन फॉर राजपतन.

0: से।
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
6: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
9: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
9: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
9: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
9: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
13: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02 03 7 3 6 3 3 नाउ। Bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
16: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
1: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
0: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
1: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
0: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
1: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
0: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
1: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए. फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए. अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077. That's 02089540077. आपकी मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है.
4: ट्रैवल इन स्टाइल.
5: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए. 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ. साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक. स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
6: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. दैट्स 02089072444.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
8: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
9: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: ये है लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th.

भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है और सारे अटेंडीज जो हैं अपना अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। दर्ज होता है या दर्ज करवाते हैं? दर्जी ना दर्ज करवा रहे हैं। जी हाँ, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। तो हमारे साइलेंट लिसनर्स दुनिया जहाँ में कहीं भी आप अगर हमें सुन रहे हैं, बिल्कुल अपनी हाजिरी लगाइए और अश्विनी को बताइए कि आप

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियाँ, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:26 हो चले हैं अभी। कभी कभी जब मैं बोलना शुरू करती होगी तो आपको लगता होगा कि क्यों हंस रही है। अब आप लोगों के जिस तरीके से आप लोग वहाँ से मैसेजेस मुझे करते रहते हैं, नीलेश जी कहते हैं गुड इवनिंग बॉलीवुड प्रिंसेस, आहा क्या बात है प्रिंसेस मज़ा आ गया सुन के। संध्या जी कहती है बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो लायका पे आ गई क्योंकि गाना अभी चल रहा था ना, ये कहाँ आ गए हम। सीरियसली फैंटास्टिक। ओके, तो ये चीज़ मैं एक्चुअली आप सबसे कब से बात करना चाह रही थी इसके बारे में, पर बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ द वीक तो ना फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या बात करें, फ्राइडे, अरे फ्राइडे तो सब मस्ती के मूड में, आज ये बात क्या करें। ओके, आज का सवाल रैंडम नहीं है, हम सब के लाइफ से रिलेटेड है। ओके, एंड इस सवाल के पीछे मैं पहले ही बता रही हूँ, दुख दर्द पीड़ा नहीं कर लेनी है किसी ने, ठीक है? नो दुख दर्द पीड़ा, नो रोना धोना। व्हाट इज़ योर लर्निंग फ्रॉम दिस? ओके, हम सभी अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स देख चुके हैं। ओके, इस देश में आके जब मैंने ड्राइविंग करना शुरू किया, आई फेल्ड फॉर 10 times। ओके, यस आई फेल्ड फॉर 10 times एंड आई पास्ड इन द 11th अटेम्प्ट। इट्स नॉट दैट कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, इंडिया में मैं बहुत ड्राइव करती थी। ओके, एंड यहाँ पे ड्राइविंग के लिए मैं पास होने के लिए एंग्शियस हो रही थी। अब ये बात भी जो है चार या पाँच साल पहले की। सो फेलिंग एवरी टाइम, एंड व्हेन यू फेल तो रिजेक्शन जो है हम ले नहीं पाते। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, मतलब व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, 10 बार मैं फेल हो रही हूँ यार, मतलब मैं इतनी गई गुजरी हूँ क्या, क्या मुझे ड्राइविंग नहीं आती? नो, यूनिवर्स का कुछ प्लान होता है हम सब के लिए और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। मेरा फेलियर मुझे कुछ सिखा रहा था, एंड बाद में ध्यान में आया मेरा फेलियर मुझे पेशेंस सिखा रहा था। और वो पेशेंस कब काम में आया? जब मैं एक्टर बनी। क्योंकि जब हम फिल्म सेट पे जाते हैं, हम लोग जब फिल्म्स की जब शूटिंग होती है, फिल्मों की फिल्मिंग होती रहती है, 12-12 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है, मेकअप लगा के आप कॉस्ट्यूम में बैठते हो, 10-10 घंटे आप लोग बैठते हो। तो जब एक एक्टर 10 घंटे बैठता है तो करना क्या है, आपको पेशेंटली राह देखनी है कि आपका शॉट कब लगेगा। आई अंडरस्टूड दिस इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्टेड मी टू लर्न। मेरी स्टोरी हो गई, अभी आप सबकी स्टोरीज। मैंने पहले कहा है दुख दर्द पीड़ा में नहीं घुसना है हमको। आपकी लर्निंग, आपके फेलियर ने आपको क्या सिखाया, ठीक है, बस इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, अगर कोई फेलियर आपको बहुत हर्ट कर रहा है वहाँ तक मत जाओ, जस्ट द लर्निंग। ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लर्निंग हियर। दिस इज लाइका गोल्ड रेडियो।
0: ये है लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: व्हाट अ लवली ट्रैक, मनादे और शैलेंद्र सिंह की आवाज में बॉबी फिल्म से सुनाया आप सभी को ना मांगू सोना चांदी। एंड सवाल जो मैंने पूछा है, ओ माय गॉड क्या बात है, लोगों ने फटाफट अपने दिल के राज या अंदर दबी बातें बोलना शुरू कर दिया है। मैंने ये पूछा है कि आपके फेलियर्स ने आपको क्या सिखाया है। फॉर मी इट वॉज पेशेंस, व्हाट अबाउट यू? किसी ने कहा है कि भाई मैं एक्सेप्टेंस में आ गया हूँ कि भाई जब चीज़ें जो हैं ऐसी हैं, सो जब बहुत एक्सट्रीम लड़ लड़ के थक जाते हैं ना, तो एक्सेप्टेंस में आना पड़ता है कि चीज़ें ऐसी हैं। फैंटास्टिक। किसी ने कहा सरेंडर कर देना, ओके आई थिंक एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर नियरली सिमिलर इसमें जा रहा है। बिल्कुल बताइए, खुल के बताइए भाई, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने फेलियर्स के बारे में बात करो, हम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कितनी बात करते हैं, अपनी खुशियों के बारे में कितनी बात करते हैं, है ना। हमने बंगला लिया, गाड़ी ली, मेरे पास में इतने रूम्स का घर है, इतने रूम्स की इतनी बड़ी गाड़ी है, ये ब्रांड की गाड़ी है, इतने हीरे जवाहरात मोती है। फेलियर्स के बारे में भी बात कर लो, उसका भी मज़ा अलग सही है। जितने भी बार आप फेल हुए, जहाँ पे, लेट इट बी स्कूल, कॉलेज, ड्राइविंग, एनीथिंग, इफ यू वांट टू कम एंड टॉक, आइए। नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के लिए तराना फिल्म से, शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाज में।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: इट्स 49 मिनट्स पास्ट 7, आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. तीन अमेजिंग फीचर्स लेके आपके लिए हाजिर हो जाती हूँ हर शाम मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 बजे तक. यादों की बारात पहले आवर में आप और हम ये सुनते हैं, सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे, थर्ड आवर में गजल या कवाली. और पहले आते से पहले एक काम होता है, वो होता है आपकी असाइनमेंट. हम बात करें आज फेलियर्स के बारे में. अब किसी ने कहा भाई फेलियर का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब क्या होता है? जो हमारे मन का ना हो वो फेलियर हो जाता है हमारे लिए, है ना. और जब हम ह्यूमन लाइफ जीते हैं तो कुछ नॉर्म्स कंडीशन दी गई, जब हम उसे नहीं मीट कर पाते हैं तो ऑब्वियसली फेलियर है. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर सक्सेस इन दैट सेंस कि भाई हमने इतनी बार फेल हुआ या हम उतनी बार फेल हुए. नो, इट्स नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हम आज बात कर रहे हैं हमारी सीख क्या रही, है ना. थ्रिलिंग थर्सडे लेके आई हूँ आपके लिए सेकेंड आवर में. वहीं तो हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में फिलहाल जो है बहुत कड़ाके की धूप चल रही है और कुछ कुछ लोग छोटी छोटी बातों में अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते. एक कार वॉशिंग सेंटर के पास में जब एक बफेलो यानी एक भैंस आके वहाँ पे खड़ी हुई, तो वहाँ पे काम कर रहे एक लड़के ने गाड़ी धोने के बाद में तुरंत वो जो स्प्रे वाला पाइप था जिसमें से ठंडा पानी आ रहा था, उस भैंस को उसने उस ठंडे पानी से नहलाया. अब होता यह है कि वो भैंस वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है और ये ठंडे पानी की बौछार से उसे बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली जब धूप बढ़ जाती है तो ये पशु और पक्षी जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं दे एक्चुअली सफर सो मच बिकॉज ऑफ दिस हीट. हम तो भी घर में चलो फैन लगा लेते हैं, एसीज लगा लेते हैं, है ना. तो समझ में ज़रूर ये काम करिए कि अपने घर के बाहर जो है बैकयार्ड है या घर के सामने भी अगर कुछ स्पेस है तो बोल्स में पानी भर के रख दीजिए. जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, जो स्ट्रे जो फॉक्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए खाना और पीना जब हम मुहैया कराते हैं, उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्मा में तो ये ऐड होता है. एंड वी प्रूव अगेन दैट वी आर ह्यूमंस. ह्यूमंस के पास में तो बोलने की भी क्षमता है, इमोशन व्यक्त करने की भी क्षमता है, तो ज़रूर ये करते चलिए. इस आवर का आखिरी गीत देवी फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1970, उस फिल्म से आपको सुना रही हूँ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. शादी के लिए आए हैं, अगर किसी की शादी है तो कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए ये गाना डेडिकेट कर लो. किसी ने अपनी शादी की सालगिरह मनानी है तो आपके लिए डेडिकेट कर लो, है ना. शादी वर्ड से रिलेटेड है, इट्स फॉर यू.
1: द वेट इज नाउ ओवर. द किंग ऑफ मेलोडी Kumar Sanu live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our Radio.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Packed for the trip? gifts, passport.
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
9: T's and C's apply.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड।
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 02085748410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
3: The Evening Show with Ashwini.
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है। इट्स 8:13. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 आपका हमारा रहता है साथ। टुडे हम मना रहे हैं थ्रिलिंग थर्सडे, मना कह रहे हैं क्योंकि है ही अब थर्सडे तो उसको थ्रिलिंग बना रहे हैं, मना कह रहे हैं। ओके, तो आज मनाया जाता है इंटरनेशनल चाय वाला दिवस। आपके चाय दिवस को मनाने वाले कौन दोस्त मंडली है? भाई मेरे तो चाय दोस्त मंडली अंजलि है जो मेरा शो भी ट्यून इन करती है, और उसने फिर से याद भी दिलाया कि आज चाय का दिवस है। ओके, इंटरनेशनल टी डे, और तुम टी के बारे में कैसे बात नहीं कर सकती? बिल्कुल बात कर रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि चाय के बारे में ना बात ना हो? जब भी चार लोग चाय की प्याली हाथ में लेके बैठते हैं तो चाय इट्स नॉट ओनली अ ड्रिंक, इट्स बेसिकली एन इमोशन अगेन। क्योंकि चाय की चुस्कियाँ लेते लेते हम लोग जब बातें करते हैं तो कितने राज बोल देते हैं ना, कितने राज निकलवा लेते हैं। कुछ मन की बातें, कुछ स्ट्रेस वाली, कुछ खुशी वाली, कुछ शुक शुक किसी को कोई सीक्रेट पता ना चले, मैं बस तुझे ही बता रहा हूँ या तुझे ही बता रही हूँ ओवर द चाय। और चाय पे चर्चा आय हाय कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, फाइनेंस में क्या चल रहा है, देशों के बीच क्या चल रहा है। तो चाय सुकून भी है और चाय खबर देता भी है, चाय खबर निकलवाता भी है। हैप्पी इंटरनेशनल

भाई अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब अमेरिका में जाके सेटल होंगे ओके और वहीं पे शादी करने वाले हैं तो पहले तो ये चीज़ सुन लो ओके. A study has revealed that the majority of American dog owners are willing to end their relationship if their dog doesn't like their partner. तो अगर डॉग्स के साथ में आपको दोस्ती करने में मुश्किल होती है तो यहाँ से दोस्ती करना सीख के चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके भी जिस इंसान को अपना पार्टनर चूज़ करो उसके पास में अगर डॉग है और उसके डॉग ने अगर आपको पसंद नहीं किया तो ऑल द बेस्ट. The study The Truth About Dog People was conducted by Rover.com and examined thousands of dog owners' responses. Data shows that the human-dog relationship

0: Friendship has evolved from one of ownership to one based on kinship. In the study, Rover.com says 54% of pet parents are willing to end a relationship if their dog didn't like their partner. इस चीज़ पे तो मैं भी बात कर सकती हूँ. हमारे यहाँ पे भी डॉग है, पीछे इसके बारे में मैं हमेशा आपसे बातें करती रहती हूँ. जब हमने हमारी इस बिटिया रानी को हमारे घर पे लाया तो हाफ ऑफ द फ्रेंड सर्कल दे वैनिश्ड बिकॉज दे वर नॉट कम्फर्टेबल विद हर. बट जो हमारे रियल दोस्त थे वो बड़े कंफर्टेबल होके रुके, कह रहे हैं क्या बात है, घर में ये छोटी सी मेहमान आई है, इससे तो हम दोस्ती करके रहेंगे. और भाई हमारी बिटिया रानी ने भी सबको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए हमारी भी दोस्ती कंटिन्यू अभी हो रही है. अगर आपके पास में पेट है, आपका अनुभव कैसा रहा कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, दूसरे लोग हैं, उनका एक्सेप्टेंस कैसा रहा, वो सब छोड़िए, आपके पेट ने एक्सेप्ट किया आपके दोस्तों को और एक्सटेंडेड फैमिली को?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hey, Marcus Waring here. Cooking a balanced meal is my forte. But did you know most of us aren't getting enough omega-3 in our diets? Life often gets in the way. So I top up with 7C's omega-3 max strength. It helps support my heart, brain and vision so I can keep doing what I love. 7C's omega-3. Keep doing what you love.
3: Daily 250 milligrams EPA and DHA supports normal heart function. Daily 250 milligrams DHA supports normal brain function and vision. NDNS 2019-23.
1: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Gajul's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाई आप में से कितने हमारे लिसनर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि अश्विनी जी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है चलने दीजिए। अगर सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहा तो आप लोग सोचेंगे कि अश्विनी कहाँ गायब हो गई, है ना। मैं यहीं पे हूँ। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और हमारा साथ। जी हाँ, आप सभी ये जो प्लेलिस्ट हमने अपलोड की है उसे पसंद कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट शो, सो माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे कि मैं आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट नहीं ले पाती इस शो में। तहे दिल से माफ़ी, ज़रूर माफ़ कर दीजिए आपकी इस दोस्त को। और अब इमोशन ऑफ द डे में, थ्रिलिंग थर्सडे। जब हमने कहा थ्रिलिंग थर्सडे तो एक थ्रिलिंग सा गीत तो बनता है मुगले आजम से। कौन सा गीत होगा जरा गेस तो कीजिए।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show. Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे. This is Like a Gold.
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
2: एपिसोड नंबर 17 डोमेस्टिक वायलेंस विच इज होस्टेड बाय दीप राजा आ चुका है. इज डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज? एज साउथ एशियंस डू वी डाउन प्ले द सिचुएशन? बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
8: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke sath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris aur timeless beauty of Italy ke through.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
11: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
10: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja talks to a panel about domestic violence.
14: We've seen repeatedly through our direct casework and our national helpline is that the police have an institutionalized culture of disbelief and dismissal towards victims of domestic abuse.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 44 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। बहुत ही प्यारा और रोमांटिक ट्रैक हमने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में सूरज फिल्म से। अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले बात हो जाए कुछ ओल्ड स्कूल पीपल की। तो आज नेशनल मेमो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, चाय के बारे में तो हमने बताया आपको, नेशनल नोटबुक डे, एंड ऑफ द वर्ल्ड डे नेशनल नोटबुक डे। अब इस पे मुझे इसीलिए बात करनी है कि कितना भी ज़माना डिजिटल हो जाए, लेकिन जर्नलिंग करना, हाथों से लिखना, आई एम ओल्ड स्कूल दैट वे, आई लव टू राइट डाउन माई नोट्स। शो के लिए भी जब आती हूँ तो मेरी प्रेप करके जो मैं लेके आती हूँ ना, पूरा ऐसे लिखावट रहती है पूरी मेरी डायरी में। आई जस्ट राइट डाउन, आई हैव माई जर्नल जिसमें मैं लिख के लाती हूँ चीज़ें। तो डिजिटल एरा में आई डोंट नो, समहाउ डिजिटल रीडिंग भी करते हैं लोग, बट फॉर मी एज आई सेड, वो जो पन्नों वाली किताब होती है, जब आप किताब नहीं खोलते हो कोई भी, तो उसका जो एक फ्रेग्रेंस होता है ना, वो एक अजीब सी खुशी देता है। इज़ इट ओनली मी कि उसको इतनी खुशी होती है? उसको मतलब क्या, मुझे इतनी खुशी होती है, या शायद आपको भी खुशी होती है। नई किताबें, स्कूल डेज में जब नई किताबें आती थी, वो जो कवर आते थे, जब भी किताब खोल के वो डाई एंड जो डाई जिससे यूज़ होती थी फॉर टू प्रिंट द वर्ड्स, उसका और उस जो टेक्सचर ऑफ द पेज है उसका एक कॉम्बिनेशन, जो एक अजीब सा खुशनुमा और मेमोरेबल स्मेल हमारे साथ में रहा करता था। आपके पास में भी इसकी सब यादें होंगी, बिल्कुल। जी हाँ, मैं मीठा खा के आई हूँ तभी इतने प्यारे प्यारे गीत लग रहे हैं, है ना। और भी प्यारे गीत हैं आपके लिए, रुकिए, जाइए मत।
1: लाइका गोल्ड करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: For £1, you'll get 129.12 Indian rupee, 374.34 Pakistani rupee, 463.9 Sri Lankan rupee, 165.09 Bangladeshi taka, 84.54 Afghan Afghani.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £108.18 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: तो आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप सबके मैसेजेस हमें ये भी बता रहे हैं कि आप लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कौन सी प्लेलिस्ट अभी और आ रही है नेक्स्ट आवर में। बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है हमेशा की तरह, जैसे मैंने कहा, थ्रिलिंग थर्सडे पसंद आया आप सबको, है ना। आप सबके मैसेजेस आए, बिल्कुल। नेक्स्ट दो ट्रैक्स जो मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, उसमें से पहला गीत होगा घूंघट फिल्म से, महेंद्र कपूर एंड आशा भोसले की आवाज़ में। एंड आखिरी ट्रैक, ओ माय गॉड, इस ट्रैक के बारे में तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, संगम, विच वॉज रिलीज इन 1964। उस फिल्म से इस आवर का आखिरी गीत आप लोग सुनने वाले हैं, लता मंगेशकर एंड मुकेश की आवाज़ में, ओ मेरे सनम। व्हाट अ ब्यूटिफुल इमोशनल ट्रैक दैट इज। गीतों का अपना एक मज़ा होता है, एंड लिरिक्स एंड इमोशन जब आते हैं साथ साथ, आहा, तो द इवनिंग शो विद अश्विनी बन जाता है। कल फ्राइडे है तो कल आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी फॉर सम टाइम, है ना। तो कल जल्दी खाना वाना खा के बैठिएगा, सारी कैलरीज बर्न करेंगे आप लोग डांस करते करते। आप भी कहीं नहीं जा रही हो, हाँ अभी हूँ मैं, एक घंटा और हूँ। और आप लोगों के जो डिनर के आप यम्मी यम्मी डिशेस के फ़ोटो भेजते ना, ये अच्छी बात नहीं है। सोचिए यहाँ पे स्टूडियो में सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं यार बैठे बैठे।

0: पदावर में एंट्री ले ली, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है। आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। कुमार सानू आशा भोसले की आवाज में जान तेरे नाम, ओए होए ये भी कितना हिट था। उसके बाद में सेकेंड जो हमने गीत सुनाया आजा शाम होने आई, दैट इज मैंने प्यार किया से 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा, मैंने प्यार किया हिट होने के बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें उस फिल्म में यूज़ की गई थी, जैसे कि सलमान खान जो अपनी कैप भाग्यश्री को देते हैं और फिर भाग्यश्री वो जो फ्रेंड वाली कैप पहनती है, वो छोटी एक कार शेप की एक बैग होती है सलमान खान के पास में रेड कलर की, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें उस फिल्म के बाद में जो मर्चेंडाइज बन के बेची गई, और जो जैकेट सलमान खान ने पहना था, फिर उस जैकेट का ट्रेंड। कोई फिल्म जब आती है हिट होती तो उसके अंदर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हिट होती है, अलॉन्ग विद दोज कैरेक्टर्स द स्टोरी एंड जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने होते हैं। सो फिल्मों का अपना एक मज़ा होता है, हर एक किरदार स्पेशल बनता है बिकॉज ऑफ दो छोटी छोटी चीज़ें। ऑब्वियसली एक्टिंग किरदार उनका तो है ही, डायलॉग्स भी हैं, पर छोटी छोटी चीज़ें भी जब हम देखते हैं तो उस किरदार के साथ में जोड़ देते हैं, जैसे कि फ्रेंड वाली कैप उस समय जो हिट हुई थी, है ना। ये सारी जब चीज़ें मैं ये गीत सुनती हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें भी याद आती हैं। तो आप में से किसी के पास में थी वो फ्रेंड वाली कैप, सलमान खान की वो छोटी सी रेड वाली बैकपैक जैसा था उनका जैकेट? हाँ था, मुझे बताइए जरूर।
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट्स, ये है लाइका गोल्ड, SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 128.75 rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai Laika Gold.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Laika Gold and Laika Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
0: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
12: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
13: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
14: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
12: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
13: Thanks. Playtime's over. Lovely.
15: Feel the fun.
16: Play Ojo. 18 plus, gamble aware.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For 1 pound you'll get 129.19 Indian rupee, 374.32 Pakistani rupee, 463.06 Sri Lankan rupee, 165.08 Bangladeshi taka and 84.58 Afghani.
15: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
15: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £108.18 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: तो भाई जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। टिक टिक करते हुए घड़ी क्या कह रही है एक बार देख लेते हैं। इट्स नियरली रुक जाए क्या 6-7 सेकेंड? ना चलो बता देते, इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। अब इवनिंग की नाइट भी हो गई, ठीक है। सो गोल्ड नाइट्स हमारा ओवरनाइट सर्विस है। लाइका रेडियो 90s वाले बच्चे खुश हो सकते हैं, आपके लिए 90s के गीत हम लोग लेके आए हैं, लाइका रेडियो पंजाबी एंड लाइका गोल्ड 2, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, अगर रात में काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, झगड़ा हो गया, दूसरे रूम में आके बैठे, जो भी चल रहा है, रेडियो लगाओ, मस्त रहो, ओके। एंड हमेशा की तरह इतना ही कहूँगी, देखिए लाइफ बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, प्यार दो, प्यार लो। हम तो म्यूजिकल फैमिली है ना, हमेशा की तरह यही कहेंगे कि पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए यार, प्यार सब कुछ देता है ज़िंदगी में, ओके। कल मिलेंगे शाम को, फ्राइडे है ना, फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे हम लोग साथ में। तो आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी, आप सबके लिए खाना पीना करके बैठिए, कैलोरीज बर्न करेंगे, शुरुआत तो धूम धड़ाके से करेंगे, है ना। कोई प्लेलिस्ट में अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट प्ले नहीं कर सकती, लेकिन हमेशा की तरह आप लोग हमारी जो प्लेलिस्ट हैं उसे पसंद करते हैं, तो पसंद करते चलिए, क्योंकि हमारे सारे के सारे प्रेजेंटर्स पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी एंटरटेनमेंट हो जाए। हाँ जी, अपना खूब ख्याल रखिएगा, मौसम का तकाजा, कल बहुत ज़्यादा धूप रहने वाली है, टेम्परेचर हमने बताया आपको, तो पानी अपने साथ रखिए, छाता अपने साथ रखिए, सनस्क्रीन लगाइए, और जैसे भी है अपने आपकी पूरी पूरी केयर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी म्यूजिकल फैमिली में से किसी को भी गवा नहीं सकती। ऑन दैट नोट आई हैव टू से बाय बाय, गुड नाइट।
2: ये है लाइका गोल्ड।
17: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।

0: अपने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or
5: Southall Travel, at all protected.
6: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
7: राय का गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच। क्यों रे चले झूठ कहा?
1: नहीं गुरुजी सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

0: पीने की चीज है ये करो मत दम, कभी नहीं सोचना कि थर्रा या रम, कितने पियो के उखड़ जाए दम, बाटली मिले तो पूरी बाटली खत्म। हर जब विस्की से मन भर जाएगा तो तवा कर जाएगा, मन पे जो कोई काबू कर जाएगा, भव सागर से वो तर जाएगा। मोटी अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरु जी, ठीक है।